0: આકાશવાણી ભુજ અત્યારે બરાબર 6 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરશું.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं. होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है. श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से

0: भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुरक्षित करने पर बल दिया।
1: की दुनिया में भारत की लाखों सी फेरा दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरा की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આકાશવાણીનું આ ભુજ કેન્દ્ર છે, પ્રસ્તુત છે વિચાર બિંદુ। આજનો વિચાર સદભાવના એક કર્મ, પઠન કરી રહ્યા છે ચૈતાલી જોશી।
3: વિચાર બિંદુ।
4: સામાન્ય રીતે સદભાવથી સદભાવ પ્રગટે છે। જો કે સદભાવ રાખીએ તો સામી વ્યક્તિ અચૂક સદભાવ રાખે જ એવું નહીં બને। તેવી વેળાએ આપણને પોતાના આપણા સદવલણ અંગેનો આત્મસંતોષ તો રહેવો જ રહ્યો। કોઈ પરત્વે સદભાવ હોય એટલે સામા જીવના જીવ પ્રકારના વલણને ટેકો દેવો જ જોઈએ એવું કશું ન હોય. સદભાવ રાખવા છતાં અયોગ્ય વલણનો સામનો પણ થઈ શકે છે. કસોટીમાંથી સહી સલામત પસાર થયા વિનાનો સદભાવ પણ શા કામનો? કર્મનો હેતુ માત્ર કંઈ તે કર્મ જ કરવામાં જ નથી રહેતો, પણ તે કરતા કરતા હૃદય કેવી કેટલી અને ઊંડી ભાવના પ્રગટીને જીવતી રહ્યા કરે છે, તે જ ખરેખર સાચું કર્મ છે. હમણાં જ આપ વિચાર બિંદુ સાંભળી રહ્યા હતા, જેનો વિષય હતો સદભાવના એક કર્મ. પઠન કરી રહ્યા હતા ચેતાલી જોશી. આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી હવે રજૂ કરીએ છીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના. કાર્યક્રમની શરૂઆત અમરદાસ ખારાવાલાના સ્વરથી, રચના ભાકુરદાસની.

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अलिया सिकंदर तू अत्यारे दरिये जाय छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारिये न कराय, समझियो?
2: ए बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया मां देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित मां प्रसारित।
4: भक्ति संगीत नो कार्यक्रम बरचरा आप आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी सांभी रहा छो। कार्यक्रम नी हवे पछी नी रचना प्रभुदास गोंडलियाना स्वर मा सांभळीए। शब्दो प्रेमदास ना।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है, रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है, लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया, स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए, किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपाना रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

चावी रहा था रामचरित मानस का ए हरि हरि ना स्वर्मा प्रसारण करायो आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी। श्रोता मित्रों हवे थोड़ी जवार में एटले के बराबर 6:55 मिनिटे आप सांभळशो संस्कृत में समाचार जे दिल्ली केंद्र थी रिले करीशुं।

0: विद्यमानदेशयोर्मध्ये सञ्जातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्यघोषणापत्रे G7 देशैः मादकद्रव्यस्य अवैधकार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्यानुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमानायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: दुनिया में भारत के लाखों सिख दुनिया के अलग अलग समुद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता

0: सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुनी अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल मथुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिवानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। हरमनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रत्याराम जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्योंकि उसका प्रयोग करने से पृथ्वी पोषक तत्वों की तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे सल्फर, जिंक, पोटाश और एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप आपकी उत्पादन लागत कम हो जाती है, किसान की जो लागत है वो बढ़ जाती है। उर्वरकों के उपयोग से उर्वरकों की दक्षता भी कम हो जाती है और लंबे समय के अंतर्गत आपके खेत और खेत की जो मिट्टी है उसकी स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। कच्छ की परिस्थितियाँ इस समस्या को और गंभीर बनाती है क्योंकि हमारा जिला पूर्ण रूप से शुष्क क्षेत्र में आता है जहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा है हमारी वो 250 से 350 मिलीमीटर होती है। पानी की कमी, कम जैविक कार्बन और कई क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी के कारण हमें मिट्टी और उर्वरकों का वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमको हमारी माटी की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। इसी उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विभाग एवं समस्त ICR विभाग किसानों को संतुलित उर्वरकों के उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। यह अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलेगा। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, इस अभियान के अंतर्गत हमारी प्रमुख सलाह मिट्टी की जांच करवाना, करवा के मिट्टी का सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से के द्वारा से ही आपको उर्वरकों का उपयोग अपने खेत में करना है। DAP का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करें और बहुत अच्छा होगा अगर आप वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार अगर आप करते हैं तो आपके खेत के अंदर लागत भी कम लगेगी, मात्रा भी कम लगेगी और आपका जो उपज और खेत की जो मिट्टी है उसके भी स्वास्थ्य संरक्षित रहेगा। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक करें। अगर ये करेंगे तो लंबे समय के बाद आप पुराण का आप देखते हैं आपके खेत की जो मिट्टी के खेत का स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा और जिसकी वजह से आपकी लागत भी कम हो जाएगी। जहां आवश्यक हो NPK कॉम्प्लेक्स, सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा अन्य संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि इनका जब भी उपयोग करते हैं उसकी मात्रा हमेशा वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए हुए मात्रा के अनुसार ही होनी चाहिए ताकि हमारा खेत और हमारा पर्यावरण, हमारी मृदा वातावरण हमेशा बना रहे। वर्षा जल का संरक्षण करें, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाएं, फसल विविधीकरण और बागवानी को अपनाएं ताकि हम अपनी मृदा को, अपने वातावरण को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रख सके। किसान भाइयों और बहनों, याद रखिए अधिक DAP या अधिक उर्वरकों का उपयोग आपके अधिक उत्पादन गारंटी नहीं है। सही उर्वरक, सही मात्रा, सही समय और सही विधि, यही सफल खेती की पहचान है। यदि हम संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और उर्वरकों की लागत भी कम होगी, आपका उत्पादन स्थिर होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी, उनके लिए भी आपके जो खेत है, संसाधन है, वो उनको सुरक्षित और लाभकारी रूप में मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, स्वस्थ मिट्टी, संतुलित उर्वरक, जल संरक्षण अपनाकर हम कच्छ की खेती को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बना सके।
1: हमारा जो प्रासंगिक संविजय है जिन्हों विषय हतो खेत बचाओ अभियान जे अंतर्गत काजरी भोजना वाला डॉक्टर मनीष गावन साथे अशरफ नथवाणी करेली बातचीत आपे सांभळी। कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी भूज केंद्र पर करवामां आव्युं।

0: अभी रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में बिलेटरल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए। मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वहां फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण वीवा टेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सुप्री, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: दुनिया में भारत की लाखों शिखर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में शिखर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
0: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूलो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति की बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवानी ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बुरा प्रभाव क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गोमिया, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टोन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिले में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
6: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
7: आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
5: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिरमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उलके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टंगू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
8: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के ग्रस्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को टीम में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
5: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसमें दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित लाडवाणी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
9: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों के कोर्स है। सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
10: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वही ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलबंदर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान ने कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Akashvani presents Morning News.
5: Anshit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VIVATEC summit in Paris with French President Emmanuel Macron, and Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. U.S. President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. In men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.

0: हमारे सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्य नगर खोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
0: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का लिखा है।
0: सर अजीत जी, मैडम रमेश जी, सपरी नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोड़ी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है।
0: राम गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतन भाई और मोतन भाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांका।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में। आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं।

वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करनी चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियाँ भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रिया करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती है। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोईता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोईता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोईता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है ऑडियो

0: nicit.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे श्रोताओं, आज के शैक्षिक कार्यक्रम की तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सतक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

से बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस ताल से उस ताल छिड़कना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो,
3: कैसी प्यारी हो।
1: जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम किन्नर हो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, अगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी।

0: समझ में नहीं आती है। मेरे माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेजी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बात देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? हा? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं देना। मैं ये तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, ये मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वही सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। हीरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो इसके भीतर थिरक फिरक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी कि चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जगकाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?

0: इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, विभांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, तो माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मरकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो
2: जाओ,
0: पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
3: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम कभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना?
3: कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
4: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
5: जी मालिक।
3: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी

0: फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा,
1: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: हमने जब सामने रहा है था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कार्यक्रम ना प्रायोजक था NCERT, प्रसारण करायो आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी।

समृद्ध थी धरान, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत की गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनाम का भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्षनी आ यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण, सेवा अने सुशासन, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी। अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य नी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।

0: जाकर फटे पुराने नोट्स बदले। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अलिया सिकंदर तू अत्यारे दिल्ली जाए छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछीमारी न कराय, समझो?
1: ए बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेलवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया मां देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित मां प्रसारित।
3: किशोर कुमार नो स्वर, फिल्म तटी पतंग।

0: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 12 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए हैं और एनडीए गवर्नमेंट के भी 12 साल हुए हैं। इस उपलक्ष्य में अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा, अलग अलग सरकारी विभागों के द्वारा पिछले 12 सालों में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और इसी सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा भी पिछले 12 सालों में बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण है, उसके तहत भुज एयरपोर्ट कार्यरत है। आज हम भुज एयरपोर्ट आए हुए हैं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 15 जून को यात्री सुविधा दिवस भी मनाया गया। यहाँ पे एयरपोर्ट के डायरेक्टर नवीन कुमार सागर सर हमारे साथ उपस्थित है। सर आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया हमें।
0: आज हम सर से जानेंगे कि पिछले 12 सालों में किस तरह से चीजें बदली हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए, कनेक्टिविटीज की तौर से भी देखा जाए, और बाकी चीजों में किस तरह के सुधार हुए हैं। और कच्छ क्योंकि एक टूरिज्म का भी हब है और साथ साथ इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से कच्छ का महत्व बहुत बढ़ जाता है, भुज एयरपोर्ट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आज हम सर से जानेंगे कि किस तरह से चीजें डेवलप हुई है, उसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये जो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण है, इसके द्वारा जो हमारे एयरपोर्ट्स है अलग अलग जगह पे, जैसे भुज एयरपोर्ट है, इस तरह देश में जितने भी एयरपोर्ट्स है इसमें यात्रियों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो हम सर से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हुए है, एक यात्री के तौर पे आप हमें क्या समझाना चाहेंगे कि यात्रियों के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए।
1: सर्वप्रथम मैं कच्छ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पे एक अकेला जो जिला है जहाँ पे दो या तीन मुख्य एयरपोर्ट है, साथ ही भुज एयरपोर्ट जो है इस जिले के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों में औद्योगिक क्रांति जिस तरीके से क्षेत्र में आई है और साथ ही साथ जो पर्यटन का विकास जो हुआ है पूरे देश के लिए एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन के पेश हुआ है। तो उसमें जो हम भूमिका निभा रहे हैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, वो एक बहुत आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल मुख्य भूमिका है। क्योंकि आवागमन इस रिमोट एरिया में सुगमता से और सरलता से अगर प्राप्त हो जाता है तो यहाँ के विकास में अनुकरणीय भूमिका हमारी रहेगी। पिछले 12 सालों की मैं अगर बात करूं, जैसा कि आपने बताया, तो उसमें यह है कि जब हम शुरू हुए थे, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार जब शुरू हुई थी, तो उस समय विमान यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे। मुख्यतः बड़े शहरों के लिए फोकस किया जाता था, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद 12 सालों मुख्य फोकस रहा कि टायर 2 टायर 3 सिटीज को जो कनेक्टिविटी मिली है, मुझ में तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन जो अन्य जिलों को जो विकास के लिए भूमिका अग्रणीय रही है वो एक बहुत अच्छी भूमिका मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पोटेंशियल होने के साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि एयर फेयर इतना सुलभ हो गया है तो वहां का आदमी की जो सोच है, जो विकास है, जो उन्नति है, वो उसकी प्रगति की जो रफ्तार है तेज हो गई है। 12 साल पहले हमारे मात्र 74-75 एयरपोर्ट थे, अभी आप कह सकते हैं 165 की संख्या में है। और निरंतर नए एयरपोर्ट, नए कार्गो टर्मिनल का जो विकास हो रहा है वो एक जो है अनुकरणीय भूमिका निभाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर याद किया जाएगा कि इतना तेजी से डेवलपमेंट जो है हमारे इन 12 सालों में हुआ, वो आगे भी निरंतर सतत रहेगा।
0: जी बिल्कुल सर। और अब हम अलग अलग फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट हम एक के बाद एक चीजों पे बात करना अगर शुरू करें तो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं एयरपोर्ट्स पर वो किस तरह के हैं, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: मेजर जो डेवलपमेंट किए गए हैं उनका मुख्य फोकस रहा है कि यात्रियों का फैसिलिटेशन, जो भी उनकी सुगमता है, जो उनको हम सहयोग कर सकते हैं यात्रा में उनकी सहज यात्रा के लिए। और जैसा कि हमारा एक नारा है कि सुरक्षा सही सेवा, उसको पूरा कार्यान्वित करने के लिए जो जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो बहुत सहजता से, मैं बहुत सरलता से आपको बताना चाहूंगा कि उड़ान स्कीम एक जो शुरू की गई थी उसमें क्या है कि टायर 3 और टायर टू सिटीज को आपके राज्य की राजधानी से जोड़ा गया। उससे ये क्या हुआ कि जो आपका रास्ता जो है एक वो छोटा हो गया बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर्यटन विकास में और एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा रहा। साथ ही साथ आपका जैसे बीज यात्रा है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, नया इनिशिएटिव था कि आप जाएं आपका चेहरे को स्कैन किया जाएगा और विद इन 2 से 4 मिनट की देरी पे आप सिक्योरिटी होल्ड प्रमाइसेस में आप चले जाएंगे अगर आपके पास सामान बड़ा बैगेज नहीं है। तो जो डेली पैसेंजर्स हैं जैसे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज वाले हैं जिनको अक्सर ये आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जाते हैं या एजुकेशन के लिए लेक्चर देने जाते हैं, उनके लिए बहुत सहज होगा क्योंकि समय की उनके पास कमी रहती थी और एक एक दो दो घंटे पहले पहुंचने के बजाय आप लोग वेब चेकिंग कराते हैं, वेब चेकिंग कराते हैं, स्कैन किया 4 मिनट में 5 मिनट में दिल्ली जैसे उसमें वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंच जाते हैं और 10 से 12 मिनट में वो जो है सिक्योरिटी को ले जाते हैं। तो एक समय की जो बचत हुई है, सबसे प्राइम फोकस प्राइम हमारा जो रहा वो यात्रियों की सहजता के लिए, सुलभता के लिए, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो छोटे एयरपोर्ट हैं जैसे भुज है, यहाँ पे एक मिशन 2047 में जो हमारा कह सकते हैं कि विजन है कि 2047 में हम जो है साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने, उसके लिए भुज को नामित किया गया। यहाँ पे मेजर आप कह रहे हैं टर्मिनल रिकन्फिगरेशन शुरू हुआ जिससे खत्म होने के बाद अब 31 जुलाई के हमारे इंजीनियर्स डेट दी है, तो उसके बाद हमारी टर्मिनल कैपेसिटी जो पैसेंजर के लिए है वो दुगुनी लगभग हो जाएगी, 540 अभी है और वो 1200 यात्रियों को सहजता से प्रति घंटे आवागमन करवा सकते हैं। तो अगर आप 8 घंटे का भी देखें तो कम से कम अगर प्राइम फुल कैपेसिटी पर ये एयरपोर्ट चलेगा तो 9 से 10 हजार यात्री प्रतिदिन यहाँ से जाने की क्षमता रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
0: और सर जैसे कि आपने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें शुरू की गई है और इसमें अगर हम सबसे ज्यादा सहूलियत वाली चीज माने तो कनेक्टिविटी है कि अगर इंसान को कहीं जाना है, अपने समय पे पहुंचना है जहाँ पे उसको काम है या किसी और चीज के लिए जा रहा है फंक्शन के लिए, तो कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए ऑप्शन बड़े हैं जाने के लिए, तो किस तरह की कनेक्टिविटी इसमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है और भुज के परिप्रेक्ष्य में भी उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: खासतौर से मैं भुज का परिप्रेक्ष्य पहले लेना चाहता हूँ कि भुज के परिप्रेक्ष्य में क्या था। पहले हम जब 2022 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो यहाँ पर सिर्फ एक एयरलाइंस एयर की सुबह की फ्लाइट थी जो लिमिटेड फ्लाइट थी, 70-80 लोग उसमें जा पाते थे और उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे कि उसमें लोड का जो रेस्ट्रिक्शन था कि 15 किलो तक ही ले जा पाते थे। मुख्य तौर पर हमारे NRI जो यहाँ के प्रवासी भारतीय हैं कच्छ के लोग खास तौर से, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी कि उनको अपना सामान लेकर आया तो ट्रेन से अथवा बस द्वारा भेजना पड़ता था और उसके बाद सामान कलेक्ट कर देते मुंबई में, फिर हवाई अड्डे पे जाते थे, हवाई अड्डे पूरा चेकिंग प्रोसेस होती थी, उनको 6 से 7 घंटे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमारा जो February 1, 2024 में एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हुई और उन्होंने जो है उसको जोड़ा कनेक्टिविटी से इस तरीके से कि जो दोपहर की लंदन की फ्लाइट है और उसके बाद 2:50 की जो न्यूयॉर्क की फ्लाइट है उससे उन्होंने कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर सुबह की फ्लाइट चलाई और उन्होंने ये प्रस्तावित भी किया था उनके जीएम साहब ने जब फ्लाइट शुरू कर रहे थे हरे NRI बंधु जो उनसे मिले थे कि आपको बोर्डिंग पास लंदन तक का भुज के ही प्राप्त होगा। ये एक मेजर चेंज था भुज के लिए कि यहाँ से यात्री आते थे तो 40 किलो का जो उनका सामान है और हैंड बैगेज की जो उनकी 15 किलो की जो थी तो कभी 55 किलो जो वो सामान ले जा सकते थे भुज से ही उनको ले लिया जाता था, सिर्फ हैंड बैगेज लेके वो इमिग्रेशन कराते थे। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर चेंज आया एयर इंडिया के आने से। फिर दूसरा चेंज आया 1 मार्च 2025 जब नई दिल्ली की हमारी एयरपोर्ट शुरू हुई थी तो एयर इंडिया ने जो प्रस्ताव हमारा माना यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन सारे पूरे कच्छ प्रवासियों का था, बहुत दिनों से जो उनकी डिमांड थी कि दिल्ली कनेक्टिविटी होने लगे दिल्ली, तो 1 मार्च 2025 से जो दिल्ली की कनेक्टिविटी आई है उसने पूरा गेम चेंज ओवर कर दिया कच्छ का। उससे सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय चाहे दिल्ली आने का एक रास्ता सुलभ हुआ। दूसरा जो इंटरनेशनल यात्री पर्यटन के तौर पर यहाँ आना चाहते थे तो वो ज्यादातर सभी लोग दिल्ली आते हैं क्योंकि दिल्ली उनका एम्बेसी रहती है, वहां पे भी काम करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और दिल्ली के द्वारा वो यहाँ पे जब आते हैं और बहुत सहजता से डेढ़ घंटे में आ जाते हैं और दो दिन रुक के यहाँ से प्रवास करके चले जाते हैं तो वो उसकी जो सुविधा प्राप्त हुई प्लस जो बिजनेस कम्युनिटीज है जैसे हमारे यहाँ जयगुआर है, जयगुआर का सेमिट्रियर का है, इनके पूरा विश्व में है, उसका हमारे यहाँ फैक्ट्री है, उनके डेलीगेट्स पूरे विश्व से दिल्ली के थ्रू सहजता से आने लगे तो बिजनेस के तौर पे पर्यटन के तौर पे ये एक मेजर चेंजेस पिछले 3-4 सालों में रहा। कोविड के बाद आप देखें तो हम बिल्कुल ही एक जीरो पे चले गए थे 3 साल तक, लेकिन धीमे धीमे धीमे 2024 से पूरा गेम चेंज ओवर हुआ है। 2024 जब प्रतिदिन 100 यात्री नहीं आना जाना हो पाता था, अब प्रतिदिन लगभग पूरा एवरेज अगर लगाए तो 800 यात्री का आवागमन प्रतिदिन होता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि हमारा जो नीतियां सरकार की रही और इस जगह को कनेक्टिविटी देने में रही, रिमोटेस्ट एरिया को, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण भी है और हमारे जो यहाँ पे रक्षा के जो विभाग है सेटलमेंट से उनके लिए भी जो है आना जाना सुलभ हो पाया, ये बहुत बड़ा एक मेजर चेंज रहा।
0: बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 4 सालों में यात्रियों का आवागमन 8 गुना हो गया है, पहले 100 था तो अब 800 यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं। यात्रियों की जो सुगमता है इसी मुद्दे पे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं तो सर जो पैसेंजर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स है एयरपोर्ट पे जो लोकल इस तरह की सुविधाएं खड़ी की गई है इस चीज के लिए वो बताइए।
1: मुझ विमानपत्तन पे शुरुआत में क्या था कि क्योंकि पैसेंजर नहीं थे तो यहाँ पे रिटेल और फूड एंड बेवरेजेस की शॉप बड़ी परेशानी थी। सृजन एक एनजीओ था, उन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप था उनका, तो वो भी मुख्यतः क्योंकि हाई एंड था तो धीमे धीमे ये हुआ कि अफसर स्कीम के तहत हमने यहाँ पे शुरुआत की 2 बार। अभी रिकन्फिगरेशन के चलते भी अफसर का हमारा जो है लोकल आर्टिस्ट के लिए शॉप थोड़ा बंद है कुछ समय के लिए। दूसरा क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो जाते थे एनआरआई ज्यादातर हमारे सीनियर सिटीजन है तो लो बीपी और शुगर की वजह से वो सुबह सुबह जब आते थे तो उनको नाश्ता और उसका था तो मुख्य हमारा स्रोत रहा जो कार्य करने का एक मोटिवेशन रहा कि पहले हम फूड एंड बेवरेजेस का शॉप खोले तो पहले 6 महीने के लिए खुला गया, उसके बाद अंदर 1 साल का टेम्पररी किया, अब मुख्य फुल एंड फाइनल 7 साल का हमने टेंडर कर दिया है। तो एक हमारी ये जो फूड एंड बेवरेजेस का है क्योंकि दिल्ली के फ्लाइट में जो लोग हैं होटल से चेकआउट करके 11 बजे आते हैं तो वो भी आके यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। रिटेल का अभी हमारा प्रोग्राम था तो मास्टर कंसेशनल उसमें हो जाता लेकिन रिकन्फिगरेशन प्रोजेक्ट आ गया क्योंकि ये मेजर प्रोजेक्ट था, इसकी दूरगामी परिणाम रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। तो अभी रिटेल के लिए तो मैं कह सकता हूँ संभव में अभी 2-4 महीने नहीं है, लेकिन पैसेंजर के लिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे पार्किंग मैनेजमेंट व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट की तरफ ऑटोमेटिक पार्किंग मैनेजमेंट का किया, उसमें उनको यहाँ के लोकल कंडीशन बताई, फिर हमने उनको कहा कि भाई इनको नाइट पार्किंग की फैसिलिटी अगर 2 या 3 दिन के लिए जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है 1 दिन या 2 दिन के लिए बम्बई दिल्ली जाते हैं तो नाइट पार्किंग फैसिलिटी उनको हमने प्रोवाइड करवाई। दूसरा अभी इनिशिएटिव अभी 26 मार्च में माननीय सांसद महोदय के कार्यक्रमों से ईवी चार्जिंग स्टेशन हमने यहाँ उपलब्ध कराया है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे वेब बेस्ड है, कोई भी आके कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यात्री है, यहाँ के कोई रहवासी भी है, एयरपोर्ट की सुविधा भी है। दूसरा जो हमारे एनआरआई बंधु है खासतौर से कच्छ के जो प्रवासी हैं उनके लिए विशेष तौर पे एयर इंडिया से हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वहाँ पे लाउंज फैसिलिटी उनको एक्सटेंड हो सके वो दें। या पिछले साल आपने देखा था कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम थी तो बातचीत करके सुलभता से एक छोटा सा लोकल अरेंजमेंट किया था कि बॉम्बे से फ्लाइट 30 से 35 मिनट लेट चलती थी और यहाँ के यात्रियों को बताया कि आपके बंधु आ रहे हैं तो कोई 40 से 50 आते हैं, पूरा परिवार आता है अपने परिवार से मिलने आके। तो उस वजह से लोकल अरेंजमेंट ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन लोकल अरेंजमेंट किया गया। तो उसमें भी उनको पैसिफाई किया गया, उनको सच्चाई से अवगत कराया गया। तो उसमें हमें अनुकूल सहयोग पैसेंजर्स का मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने जो सच है वो बताया, एक टेक्निकल फॉल्ट इस तरीके से करके नहीं बताया। तो कोशिश हमारी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की यही रही कि जिस तरीके से यात्रियों के लिए हम लोग सर्विस देने के लिए बने, तो जो सेवा भाव है वो कायम रहे। जैसा इनिशिएटिव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय हमारे मिनिस्टर ऑफ रिलेशन ने लिया है, तो उसी में एक कड़ी और जोड़ी फ्लाइट डिले की। जैसे फ्लाइट डिले हो जाती है तो यात्री क्या करे, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी का आयोजन किया गया जहाँ पे किताबें सुलभ रहेंगी, उसकी किताब पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, एक दो घंटे में नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ले जा सकता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे एयरपोर्ट में जाके अगर सबमिट करते लाइब्रेरी वहां पे भी है, देता है ठीक, नहीं तो नहीं देता। उसके लिए कई एनजीओ हमारे मदद के लिए आए हैं, रेगुलर सप्लाई होती रहती है। मुझे बताते हैं हर्ष हो रहा है करीब 900 किताबें हमारे यहाँ से जा चुकी हैं, जिसका मतलब करीब 800-900 यात्रियों ने पुस्तकों को पढ़ा है, और एक जो इनिशिएटिव था वो एक संपूर्णता की तरफ जा रहा है। चाइल्ड के लिए एरिया अभी हमने नहीं दे पाया, लेकिन

0: सारे स्टेशन हमने दिए हुए हैं।
1: जैसे कि हम जानते हैं कि कच्छ एक विशिष्ट जिला है, कच्छ की जो कला है जिसके बारे में आपने बताया कि जो यहाँ के आर्टिजन्स के लिए गैलरी वगैरह भी आपने डेवलप की है यहाँ पे गुजर पट पे, इसी तरह कच्छ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो हेरिटेज है, इसको भी बढ़ावा देने के लिए भुज एयरपोर्ट की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म पूरा फील्ड है यहाँ पे कच्छ में, तो इस सबको प्रमोट करने के लिए किस तरह के प्रयास किए।

0: स्टाइल के अंदर डेवलपमेंट कमिश्नर मतलब है उनके अंतर्गत आता है, उनसे हमारी बातचीत रही, उनसे हम साथ साथ उनके साथ मिलकर काम किया, तो उनकी तरफ से जो हमें फीडबैक मिला है, तो अब हम जो है रिकन्फिग्रेशन प्रोजेक्ट के बाद अगला स्टेप इस स्टेशन को भुज एयरपोर्ट की बिल्डिंग को एक कल्चर हेरिटेज के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सारा पेंटिंग और जो पिल हमारे कॉलम्स है वो छत और ये सारी चीजों पे जो है कच्छ की संस्कृति कच्छ की विरासत की झलक मिलेगी आपको। पेंटिंग है, लेपर्ड आर्ट है, रावणगिरी के लिए भी हमारी बात चल रही है, उसके कारीगर मिले, तो जो डिपिक्शन है उनका, जैसे आपने देखा होगा कि 13 विलेज के जो उनके महल में था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि ऊपर के जो हमारा पूरा मॉल है उस पर हम चाह रहे हैं कि सांस्कृतिक धरोहर वो सारी डिपिक्ट हो, तो यहाँ के जो भी हमारे जो आर्टिस्ट बंधु हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से भी हमारी बात चल रही है, तो एक क्यूमरेटिव एफर्ट रहेगा क्योंकि बिल्डिंग हमारी काफी बड़ी है, बॉल्स हमारे पास है, तो वो सारी चीजों को धीमे धीमे एक स्वरूप में लाने में समय लगेगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो अप्रूवल भी हमें अपने हेडक्वार्टर से लेना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा सिटी साइड एरिया है उसमें गार्डन डेवलपमेंट और जो वहाँ पे वॉल हमारी जितनी भी आ रही है पेरीमीटर वॉल है, तो पेरीमीटर वॉल का डेवलपमेंट यहाँ पे आशापुरा इंडस्ट्रीज है, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है, तो कच्छ की विरासत कच्छ की धरोहर जो अपने बादशाह के टाइम पे और अराइवल के टाइम पे देखेंगे वो सारी चीजें जो रहेंगी वो सारा चीज हमारे वॉल पे पैनल पे करेंगे। साथ ही साथ उससे कहा है कि हमारा गार्डन मेंटेनेंस वो सारा वो जो है दिखाएंगे कि कच्छ में भी इतना अच्छा मेंटेनेंस की प्रक्रिया रहेगी। अगली का जिन्हें मैं बताना चाहूंगा कि अवसर स्कीम के तहत आर्टिशंस को सामान बेचने के लिए दुकान पे आना पड़ता है, हम उसके नेक्स्ट फेज में जाना चाहते हैं। नाबार्ड के सीएम साहब से मुलाकात की है, नाबार्ड के डीडीएम साहब से, नीरज सिंह से बात की है, हमने कहा है आप उनकी स्टोरी बनाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज ज्यादा करें ताकि उनकी कहानी के साथ लास्ट में उनका क्यू आर कोड हो, तो उनके प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की जानकारी साथ ही आर्टिशन का पता डिजिटली रहे, उसको फिजिकली प्रेजेंट होने की यहाँ जरूरत ना रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो है महिलाएं उस क्षेत्र में है वीविंग में हैंडीक्राफ्ट में, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य के चलते या आप कहें डिस्टेंस के चलते वो रोज एयरपोर्ट पे 15 दिन के लिए नहीं आ सकती, लेकिन डिजिटल माध्यम से वो हमारे यहाँ आ सकती है, तो अब ये अप्रूवल थोड़ा सा रह गया है, तो उसे हमने कहा है कि जैसे बड़ा टीवी आपके डिस्प्ले बड़े एयरपोर्ट में होता है, इस तरह की एक मॉल हमने नाबार्ड के लिए आरक्षित करी हुई है अराइवल साइड में, साथ ही डिपार्चर साइड में भी, तो जब उनका एसओएस उनका एक या दो महीने अप्रूवल मिलेगा तो आप पाएंगे कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से कच्छ की पूरी विरासत संस्कृति लोक साहित्य लोकगीत साथ ही साथ यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है जैसे खारिक को भी GI टैग मिला है, ऐसी चीजों का भी डेवलपमेंट, ऐसी चीजों के बारे में भी कहानियां आप अवसर के स्कीम के तहत आप हमारे एयरपोर्ट पर पाएंगे।
1: बिल्कुल ये चीजें समझी जा सकती है कि ये सब जो इनिशिएटिव्स है जो पहल आपकी तरफ से की जा रही है, नो डाउट इन सब चीजों की वजह से जो देश विदेश से जो यात्री यहाँ आते हैं, जो कच्छ पहली बार भी आते हैं, तो उनको भी ये जो कच्छ की जो पहचान है, इस तरह की जो धरोहर है कच्छ की, वो उनको एयरपोर्ट पे ही एक रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव इसको हम मान सकते हैं। इसके साथ ही सर रिलीजियस जो डेस्टिनेशन है, जो धार्मिक जो प्लेसेस है यहाँ पे, उनके लिए पीबीएम फैसिलिटेशन के लिए भी आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह के है सर, वो भी अगर आप ऐड करना चाहें।
0: क्योंकि इस बारे में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें निश्चय सौभाग्य मिला लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे IAS का बैच आया था, उसके बाद इस साल भी आए, तो IAS के बैच जब आए थे तो उनको हमें एयरपोर्ट के साथ थोड़ा सा एक रेफरेंस सिटी का भी देने का सौभाग्य मिला, तो उसमें हमें नारायण सरोवर, आपका कोटेश्वर माता कमांड और आपका लखपत फोर्ट, जो भी हिस्टोरिकल साइट थी एक्सेप्ट जो भी टूरिज्म वाला था, भालावीरा तो एक फेमस जगह है, तो एक जो सर्किट जो बनता

0: खुश हुए और हमारे साथ उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर थे एसडीएम महोदय मुंद्रा से कंगना से आए थे, ही वाज अगेन वेरी हैप्पी कि बहुत सारी चीजें आपने रिसर्च करी हुई है, कुछ चीजों की जानकारी हमें भी नहीं है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उनका सहयोग कर पाए। एक आईएएस की ट्रेनिंग के बैच जो 10 लोग आए थे उनको हमने दिया, उसी दिन से हमने फिर एक प्रस्ताव अपने रीजन हेडक्वार्टर को भेजा है कि यहाँ पे एक हम ऐसा काउंटर बनाएंगे कि रिलीजियस पिलग्रिमेज के साथ साथ जो यहाँ का लोकल टूरिज्म है वो दोनों साइड बाई साइड हमारे पिलग्रिमेज रहेंगे, जिससे कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो बगैर हिचक उस काउंटर में जाके जानकारी प्राप्त कर सके। अब उसमें क्या रहेगा, दो चीजें मुख्यतः रहेंगी, एक तो डिस्टेंस और एक वहां पे जो है यात्रा का जो टूर एंड ट्रेवल्स का। तो उसके लिए अभी हमारी ये दो तीन जो यहाँ पे होटल इमर्ज हुए हैं नए, एजेंटा है जैसे नया बना है और रामी है, उनसे बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि इस सीजन में आप देखें रिजर्वेशन कम टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स आपके एयरपोर्ट पे ही मिल जाएंगे पूरी जानकारी के साथ कि खावड़ा कितनी दूर है, खावड़ा का डिस्टेंस कितनी दूर है, और साथ ही साथ किसी आर्टिशन का अगर वह ग्रुप इंटर अच्छा उनसे बातचीत चल रही है दो तीन से, तो उनसे भी कहेंगे तो हम हो सकता है कि उसके बैकग्राउंड में ही ऐसा कोई पेंटिंग या कोई ऐसा आर्टिफैक्ट तैयार करें कि जिससे उसको सारे डायरेक्शन और प्लस बाकी जो है डिजिटल जानकारी प्राप्त हो सके। तो टूर एंड ट्रेवल वाले जो ऑपरेटर्स अगर हमारे एयरपोर्ट पे ही बैठेंगे और उनको एक ही हमारा रहेगा जो अभी बजवे भी हमारा जो है सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आप उनको जो है बेनिफिट पहुंचाए, तो ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा आने वाले वक्त।
1: तो इस तरह हमने नवीन कुमार सागर सर जो कि भुज एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं उनके साथ हमने विस्तार से बातचीत करी कि किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सर आखिर में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: आखिर में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जो एयरपोर्ट है यहाँ मुख्य दो तीन चीजें चेंज होंगी। आप देखेंगे कि रिकन्फिगरेशन के पश्चात हमारा नेक्स्ट फेज रहेगा कि यहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने का और डेस्टिनेशन ज्यादा बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ जैसे साउथ की डिमांड है, बंगलोर की डायरेक्ट फ्लाइट अगर यहाँ से हो जाती है तो साउथ की तरफ हमारा एक कदम बढ़ जाएगा, साउथ की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। अक्टूबर माह में इस माह में ऑस्ट्रेलिया मेजर के चलते एक अगले माह से जैसे इंडिगो शुरू हो रही थी अक्टूबर माह में, उम्मीद करते हैं कि उनका शेड्यूल तो पारित हो गया है और नई दिल्ली और मुंबई के लिए तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट उनको बंगलोर की और हैदराबाद की विशेष तौर पर हमने मांगी है तो वो हो जाएगी। साथ ही हमारा जो पार्किंग बे है उसके एक्सपेंशन का प्रोग्राम भी हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ से भेजा था मंजूर हो गया है। तो अभी क्या है कि हमारा एयर बस जो 100 सीटर वो एक ही घूमने पार्किंग दे सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद हम तीन एक साथ 100 सीटर के पार्किंग बे यहाँ पे अप्रूव हो जाएंगे। कार्गो के लिए भी हमने परमिशन ले लिया, स्मॉल कार्गो के लिए एयरलाइन से बातचीत चल रही है, वो कार्गो जैसे ही ऑफिस खोलेंगे निकट भविष्य में कोशिश करते हैं कि अभी ये जो सीजन आ रहा है इसमें कार्गो की फैसिलिटी भी हो जाए। दूसरा कार्गो की फैसिलिटी के साथ साथ अभी यहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हैं उनसे बातचीत चल रही है कि डाक निर्यात केंद्र हमारे एयरपोर्ट में खोला जाए, तो डाक निर्यात केंद्र अगर यहाँ एयरपोर्ट में होगा तो डाक की सेवा और हवाई सेवा दोनों एक जगह होने से जो हमारे आर्टिशंस हैं वो अपना सामान भेजना चाहते हैं शीघ्रता से वो एयरपोर्ट से ही सारी चीज व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो ये एक चीजें हम जो है भविष्य में शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रजूआत रही कि पीछे भी बात हुई थी सिटी साइड डेवलपमेंट में हमारे एयरपोर्ट को शामिल किया जाए, रिंग रोड के साथ साथ जो हमारी अप्रोच रोड है उसके दोनों साइड की बातचीत चल रही है। हमारे जो गत डीएम कलेक्टर साहब थे आनंद पटेल जी ने उन्होंने हमें वर्बल अप्रूवल तो दिया था, तत्काल कलेक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि साहब वो जो हमारी बात हुई थी वो सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए जो 300 मीटर का एरिया आप देख रहे हैं उसमें दोनों तरफ चार है उसको डेवलपमेंट की परमिशन मिलने के बाद आप पाएंगे कि आपका भुज का एयरपोर्ट किसी भी बड़े एयरपोर्ट से किसी भी चीजों में कम नहीं।
1: तो इस तरह हमने विस्तार से बहुत सारी चीजों के बारे में जाना कि किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं और आने वाले समय में भी क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े और इतने विस्तार से हमें मालूम।
0: बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपको भी हम उपलब्ध कराएंगे, समाचार पत्रों को भी उपलब्ध कराया है कि पैसेंजर के विषय वस्तु की ही एक बात है, उनकी सुविधा के लिए बात है कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हर शनिवार इतवार यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर है एयरलाइंस के, एयरपोर्ट के, लॉस्ट एंड फाउंड के, अगर आप वो रेगुलर व्यू से पहले या बाद में चलाते रहेंगे तो यात्रियों को और जो उनके घर के लोग हैं, लॉस्ट एंड फाउंड होता है, कभी सामान छूट जाता है, कभी यात्रा के लिए जानकारी चाहिए होती है, तो बहुत सुलभ हो जाएगी। तो इसमें आप हम सहयोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, समय देने।
1: बिल्कुल सर, हमेशा आकाशवाणी का सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: telefonii, Nanji?
1: Namaskar.
0: Namaskar. Ji, and kya bolo tha?
1: Bolchi bola do, Bridget Mehta. Dakshi, bolin, ye mit chono ka? Mit chono hai.
0: Haan, haan, kya git chono hai?
1: Film kaadu lo gita hai. Chora mani ghar pan kar raha hai.
0: Jarur, jarur thi pasan gita
1: hai. Bole bole kare karma ko dekhe aur dikha hai. So, ye git bolo chola gita hai. Family member jana bola.
0: Haan, haan.
1: Sumati Bina Bimata, Krishna Mata, Vipul Nanda Mata, Manashi Mata, and Baby Leva.
0: Jaru, Jaru, and you person.
1: Jaru,
0: Jaru, Jaru, Jaru, हेलो नमस्कार आकाशवाणी भूज कच्ची फनी नांजी पसंद कार्यक्रम एकदम मजा में
2: कतरी कमेंगी भगवान सर की गाल कही तो मुझे ना अब्दुल कादिर कतरी
0: बोलो बोलो भा
2: करो क्या तो भूज वातावरण की
0: बस हाँ बस ही जाए मनी थे कारे है
2: वर वाद हाँ जा रहा है वर साथ जो भगवान का नाम है पर कच्ची मारू तो मैं तो नहीं वो कर कच्ची जरूर है वो बन गया नहीं दिखा जरूर है नहीं जाने फिर भी कर खास हो तो लाइफ पर खास हो नहीं पाजो चौथे की चारों चार मिले मार में जाना जो मेरे खेती वाली जो खास मेरे पाक पानी थी हाँ सारे कर्मों को देखे और दिखाए खुद सरस बच्चे रचना का एक जो गीत है वो सरस गीता है अभी नहीं क्या नहीं कुमारी एम फिल्म में दफा की गीता का एक इच्छा है गीता मेरा मन जरपन कर लाए
0: जरूर
2: जी।

0: हेलो, आप है शौर्य भुज? अच्छी फोनी ना जी, पसंद कार्यक्रम?
1: नमस्कार,
0: आप शौर्य भुज?
1: हाँ, आकाशवाणी भुज। हाँ, आप आदिपुर बोल रहे?
0: बोलो बोलो महेंद्र भाई। स्मिता, एकदम मजा में आई थी। आयो
1: साथ मेरा घरा बोलेगा आदिपुर से महेंद्र भाई को गीत सुनवा।
0: हाँ हाँ,
1: आवाज है तलक नहीं जो।
0: हाँ हाँ,
1: फिल्म है बरादरी। गाय
0: जरूर जरूर।
1: तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती।

0: तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। अब ईद है मुसाला की उम्मीद आवाज
1: में
0: मुसाद मिला पत्नी श्री रंजन मिंटो उनकी छोकरी अंकिता नितिन कुमार मानपुरा उनके छोकरा जय चौहान हाजीपुर। जय श्री कृष्ण।
1: जय श्री कृष्ण।
0: अरे यदि छोटा तो नहीं क्या मुझे जय श्री कृष्ण।

0: नमस्कार आकाशवाणी भूज कच्ची फोनी नाजी पसंद कार्यक्रम बोलो बोलो कल्याण भाई
1: आकाशवाणी कार्यक्रम में
0: हाँ हाँ
1: कच्ची फोनी दो कार्यक्रम पसंद
0: घुमरा जो
1: भी सुना दी घुमरा जो मैं आवाज
0: जरूर सुना दी

0: प्राणी पूछ कच्ची फोनी ना जी पसंद कार्यक्रम एकदम बराबर है की आयो हाँ कयो गीत सुनो आया जरूर जरूर सुनाई दी अच्छी जा हेलो नमस्कार आकाशवाणी भूज कच्ची फोनी ना जी पसंद कार्यक्रम
1: मोहम्मद अली
0: बोलो बोलो एकदम बराबर है की आयो मेरे
1: बराबर
0: हाँ कयो गीत सुनता अज जरूर से सुनाई दींदी जरूर थी पसंदगी पूरी करी दींदी जरूर जरूर
1: भले भले।

0: आकाश रानी पहुंच गई थी, फोन ही 90 परसेंट कर रही
1: हूँ।
0: बोलो बोलो।
1: अरे
0: वाह वाह
1: वाह।
0: अरे वाह। हाँ माँ कालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में। वाह वाह वाह। जरूर जरूर सर। हाँ गिनी गिनो गिनी गिनो। जरूर से सुने दीना।

0: हेलो नमस्कार, आकाशवाणी भूज कच्छी फोनी 90% कार्यक्रम। हाँ बोलो बोलो, आपकी बाकी है यहाँ
1: बरोबर मीटर में आई है।
0: एकदम बराबर आई हूँ। क्या गीत सुनू आज?
1: जरूर
0: सी सुनाई दींदा सी।
1: जरूर
0: जरूर सुनाई दींदा सी।
1: हाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी भूज कच्छी फोनी नांजी पसंद कार्यक्रम।
1: कच्छी फोनी नांजी पसंद कार्यक्रम।
0: जी जी
1: हाँ, भरूड़िया से हेल्प करा तो विभाई रबारी।
0: बोलो विभाई।
1: स्मिता बेन बोलो था?
0: हाँ स्मिता बोला थी।
1: क्या
0: एकदम बराबर आई की आयो?
1: बस मजा में आई है। जो आकाशवाणी परिवार से मजा में आई ना?
0: मेरे मजा में, मेरे मजा में। क्यों गीत सुन रहा आज?
1: फिल्म जो गायन सुन रहा है मुख्य घायल फिल्म जो है।
0: जी जी
1: जरूर
0: जरूर। हाँ जी पसंद की पूरी कर दी।
1: भले भले।
0: अच्छी जा।

0: हेलो नमस्कार आकाश चंद्र भुज जी कच्छी फोनी ना जी पसंद कार्यक्रम
1: नवीन भाई बोला तो सागर सेठी भुज की
0: बोलो बोलो नवीन भाई
1: मुझे पसंद की फिल्म है जो पिक्चर जो नाम है प्यार का मौसम इनका शब्द ही लता मंगेशकर जो स्वर है और शब्द ही
0: जरूर थियां जी पसंद की पूरी करी छी
1: नवीन चंद्र गौर संयोजन गौर प्रियन गौर विठल गौर आयुष गौर दस गौर अनुषी गौर सागर सिटी भूज
0: जरूर जरूर थियां जी पसंद की पूरी करी छी
1: जरूर समझाई दीजा।

0: नमस्कार आगे सुनी बुझ बोलो बोलो फल जाना एकदम मजा आई की है हमारे
1: बस मैं मजा लगी थी के
0: हाँ थे गीत सुनता आज
1: आज सोना की जब देखा
0: है सब सी सुनाई दी दस
1: मुझे फिर मुझे मम्मी हवा भाई
0: हाँ
1: कुलसुम भाई मैं पप्पा आयु था मैं मुझे
0: जरूर आज पसंद की पूरी करी चलियो

0: हेलो नमस्कार आकाशवाणी भूज कच्ची फोनी नाजी पसंद कार्यक्रम बोलो बोलो मनोज भाई एकदम मजा में आई आयो कहो गीत सुन दाज जरूर थी सुनाई दू
1: राजू भाई
0: जरूर थी पसंदगी पूरी करी दू
1: भले
0: अची जा

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। ये सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: શ્રોતા મિત્રો, બપોરનો એક થવા આવે છે, સાંભળીશું દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केन्द्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय भारती कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं दाग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका

0: कार्रवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसनी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, हम कहें विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मल्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कविता कृष्णमूर्ति ने आप सांभळी रह्या था, रचना थी रमण भाई पटेल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोगल की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉडल्फ साइज से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोगल ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेट बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर शिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई है और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस नोटिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर

सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले 3 दिनों में 47

प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिर

छह मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 35 की यात्रा पर इंदौर पहुंचा। अमेरिका और ईरान मध्य 14 मुद्दा शांति करार पर हस्ताक्षर तथा पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रेंच उद्योगपतियों साथ शनिवार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। आज सांजे बीबीटेक समिट में पर हाजिरी आपसे राष्ट्रीय तपास एजेंसी पंजाब में अमृतसर लश्कर तैयबा साथ संकायला अंकुश कपूर घरे पहुंचा पाया। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी विश्व 13 प्रदेशों में भूतपूर्व स्थिति वधु वंशी सके तेवी चेतवनी आपी। केंद्रीय नाणकीय वर्ष 2026-27 में 18,900 करोड़ रूपया प्रमाण साथ 26,000 किलोमीटर थी वधु ग्रामीण रस्ताओं निर्माण करशे। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ग्रुप के में उज्बेकिस्तान सामने 3-1 थी जीत मेळवी। हॉकी में भारत उरुग्वे ने 3-2 थी हरावी। राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। राज्य कक्षा में उजवणी महोत्सव में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में रहेशे उपस्थित। 1.25 करोड़ वधु लोगों ने थयुं रजिस्ट्रेशन। राज्य में 14-20 जून सुधी योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम साथ विशेष कार्यक्रमों आयोजन। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी और गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा योग शिविर योजाई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय में राज्य में 15 शालाओं की पसंदगी सही। शालाओं में मिलसे 1,00,000 नो फंड। हवामान विभाग ने आगाही मुजब राज्य में वर्षादी माहौल। सौराष्ट्र सहित दक्षिण मध्य और उत्तर गुजरात में जिलों में वर्षादी झापटा। लोगों ने बफारा गर्मी में मिली राहत। कच्छ जिले में पवन ने कारण लोगों ने बताया थी आंशिक राहत। मुख्य समाचार पूरा थाया है पीछे आप 7:30 मुख्य समाचार सांभी शकशो।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खुकीमाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य सुर्खियूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ अॼु पेरिस में फ्रांस जे मुख्य आला उद्योगपतियुनि सां गॾु उच सतही बैठकूं कयूं। प्रधानमंत्री हिन वक़्तु वीवाटेक शिखर सम्मेलन में पिण शिरकत करे रहियो आहे। गृह मंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्लीअ में भारत में अमेरिका जे सफ़ीर सर्जियो गोर सां मुलाक़ात कई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुभाणे खां ॿिनि ॾींहनि जे ओडिशा दौरे ते रहंदी। मर्कज़ी तालीम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आर्तवारु ॾींहुं थींदड़ नीट यूजी ॿीहर इम्तिहान जी तयारियुनि जे लाइ अॼु हिकु उच सतही जाइज़ा बैठक कई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुभाणे नई दिल्लीअ में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना तहत 2400 करोड़ रुपयनि जी हौसला अफ़ज़ाई ॾींदड़ माली मदद इमदाद विर्च कंदो ऐं भारत हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे खे 3-2 तां शिकस्त ॾेई सेमीफाइनल में दाख़िल थियो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अॼु पेरिस में फ्रांस जे केतिरनि ई आला उद्योगपतियुनि सां मुलाक़ात कई। इन मुलाक़ात में मैन्युफैक्चरिंग, AI ऐं सामूंडी ढांचे जहिड़नि विषयनि ते चर्चा थी। बैठक बैदि आकाशवाणी सां ॻाल्हाईंदे इन्हनि कारोबारियुनि भारत में वधंदड़ वजहनि जो ज़िक्र कयो ऐं मुल्क में पंहिंजे अॻिते जी भूमिका ते रोशनी विधी। पेश आहे हिकु रिपोर्ट।
1: संघ कोबरा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम कार्बन तकनीकों और ऊर्जा कुशल समाधानों में कंपनी के निवेश को रेखांकित किया। विस्तार बताया है कि CEO आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMACGM के चेयरमैन और CEO प्रदान सावा ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने भारतीय शिपयार्डों के साथ साझेदारी में 6 LNG संचालित जहाजों के निर्माण के कंपनी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में लॉजिस्टिक्स, शिप रिसाइकलिंग और गहरे समुद्र के बंदरगाहों के विकास पर भी चर्चा हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन वक़्तु फ्रांस जे राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रोन सां गॾु वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग वठी रहियो आहे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में केतिरनि ई उच सतही कार्यक्रमनि जी अॻवानी पिण कंदो। सम्मेलन जी पुॼाणी प्रधानमंत्रीअ जे तक़रीर सां थींदी। वीवाटेक सम्मेलन यूरोप जो सभ खां वॾो तकनीकी ऐं स्टार्टअप कार्यक्रम आहे ऐं इन सम्मेलन में भारत जो सभ खां वॾो पेवेलियन आहे। गृह मंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्लीअ में भारत में अमेरिका जे सफ़ीर सर्जियो गोर सां मुलाक़ात कई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ॼाणायो त ॿिन्ही अॻवाननि सलामती खिते में ख़ासि तौर सां आतंकवाद ऐं नशीले पदार्थनि जे ख़िलाफ़ ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में सहकार खे वधीक मज़बूत करण ते विचूरवार चर्चा थी। गृहमंत्रीअ चयो त भारत ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में आलमी रणनीतिक भाङे भाईवारी खे अॻिते वधाइण ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जे नागरिकनि खे वाहिनी लाॻापन सां लाभ मिले इन ॻाल्हि जी ख़ातिरी करण जो संकल्प वरितो आहे। सरकार चयो आहे त सभई तेल रिफाइनरी प्लांट जोगे कचे तेल जे भंडार सां गॾु उच सघ सां कार्य करे रहिया आहिनि। ओल एशिया जंग ते अॼु नई दिल्लीअ में मुंतज़िम ब्रीफिंग प्रेस ॻाल्हि ॿोल में पेट्रोलियम ऐं कुदरती गैस वज़रात जी जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा चयो त गुज़िरियल 3 ॾींहनि में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर मुयसर कराया विया आहिनि। हुन वधीक ॼाणायो त
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई है और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: मर्कजी तैलीम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आर्तवार ॾींहुं थींदड़ नीट यूजी ॿीहर इम्तिहान जी तयारियुनि जी कथ करण वास्ते अॼु ऊच सतह जाइज़ा बैठक जी सरबराई कई। बैठक में हुन इम्तिहान जी कार्रवाईअ में ईमानदारी, शिफ़ाफ़पिणो ऐं क़ाबिलियत जी ऊच माण मापुनि खे बरक़रार रखण जी ज़रूरत ते बल ॾिनो। हुन अमलदारनि खे आज़ाद ऐं बेरिया ॿीहर इम्तिहान मुंतज़िम करण लाइ सभई ज़रूरी इंतिज़ामनि जी ख़ातिरी करण ऐं ख़बरदारी रखण जूं हिदायतूं ॾिनियूं। हे ख़बरूं तव्हीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हीं असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिणु ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुभाणे खां पंहिंजे घरू राज्य ओडिशा जे ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते रहंदी। इन दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज ज़िले जे रायरांगपुर में एम्स भुवनेश्वर पारां मुंतज़िम हेल्थ कैंप में शामिल थींदी। हूअ मोहतरमा कुसुमी ब्लॉक में हिक पाणीअ जी रसद करण वारी योजना जो पिण मुहरत कंदी। इन योजना सां खाण खोटाईअ सां मुतासिर 113 ॻोठनि खे लाभ मिलंदो। हूअ साहिबा हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारी जे मातृशक्ति भवन, हिक ख़ासि सर्किट हाउस ऐं रायरांगपुर पुलिस ज़िले जो पिण मुहरत कंदी। छंछरु ॾींहुं राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर जो दौरो कंदी। राष्ट्रपति ओडिशा सरकार जा 2 साल मुकमल थियण वारे मौके ते रायरांगपुर में मुंतज़िम कार्यक्रम में शामिल थींदी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिण हाज़िर रहंदो। इन दौरान राष्ट्रपति ऐं प्रधानमंत्री केतिरनि ई तरक़ियाती योजनाउनि जो मुहरत ऐं संगे बुनियाद रखंदा ऐं हिक ज़ाहिर सभा खे पिण ख़िताब कंदा। चीन जो परदेह मंत्री वांग यी 22 ऐं 23 जून ते ब्रिक्स राष्ट्रीय सलामती सलाहकारनि ऐं राष्ट्रीय सलामतीअ ते ऊच एविज़न जी 16 बैठक में हिसो वठण जे लाइ भारत जो दौरो कंदो। इहो दौरो राष्ट्रीय सलामती सलाहकार अजीत डोभाल जी नींद ते थी रहियो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे नई दहलीअ में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जे तहत 2400 करोड़ रुपयनि जी हौसला अफ़ज़ाई ॾींदड़ माली मदद इमदाद विर्च कंदो। योजना जे बारे में मीडिया खे ॼाण ॾींदे नई दहलीअ में पोरियत ऐं रोज़गार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ॼाणायो त गुज़िरियल साल ऑगस्ट महीने खां PMVBRY जे तहत 63 लख खां पिण वधीक कर्मचारियुनि खे रस्मी तौर सां कम कंदड़ अमले में शामिल कयो वियो आहे। इन में लगभॻि 30% महिलाऊं आहिनि। हुन वधीक ॼाणायो त पहिरीं सरकारी नौकरी हासिल कंदड़ नौजवाननि खे 2 किश्तुनि में 15,000 रुपयनि ताईं जो इंटेंसिव ॾिनो मिलंदो। हॉकीअ में भारत अॼु न्यूज़ीलैंड में मुंतज़िम FIH महिला नेशंस कप में उर्गवे खे 3-2 तां शिकस्त ॾिनी। भारत पूल ए में अव्वल जाइ हासिल करे सेमीफाइनल में दाख़िल थियो आहे। सेमीफाइनल में भारत जो मुक़ाबलो 20 जून ते चिली ऐं कोरिया जे विच में थियण वारी मैच जी सोभियारी टीम सां थींदो। फीफा विश्व कप 2026 में कोलंबिया अॼु सुबुह जो उज़्बेकिस्तान खे 3-1 तां शिकस्त ॾिनी आहे। अॼु राति जो ग्रुप ए में कज़ेक रिपब्लिक जो मुक़ाबलो ॾखण अफ्रीका सां थींदो। भारतीय वक़्त मुताबिक़ इहा मैच राति जो 9:30 बजे खां शुरू थींदी। लॉस एंजलिस में राति जो 12:30 बजे खां स्विट्ज़रलैंड जो मुक़ाबलो बॉस्निया ऐं हर्ज़ेगोविना सां थींदो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अॼु 254 पॉइंट वधी करे 77,410 ते बंदि थियो ऐं निफ्टी पिण 82 पॉइंट वधी करे 24,168 ते बंदि थियो। आबहवा महकमे चयो आहे त ईंदड़ 4 खां 5 ॾींहनि ताईं तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार ऐं छत्तीसगढ़ जे कुझु हिसनि में ॾखण ओलह मॉनसून जे अॻिते वधण जे लाइ हालतूं मुनासिब आहिनि। आख़िर में मुख्य ख़बरूं हिकु बार ॿीहर ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु पेरिस में फ्रांस जे मुख्य आला उद्योगपतियुनि सां गॾु ऊच सतह बैठकूं कयूं। प्रधानमंत्री हिन वक़्तु वीवाटेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करे रहियो आहे। घरू मंत्री अमित शाह अॼु नई दहलीअ में भारत में अमेरिका जे सफ़ीर सर्जियो गौर सां मुलाक़ात कई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुभाणे खां 2 ॾींहनि जे ओडिशा दौरे ते रहंदी। मरकजी तैली मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आर्तवार ॾींहुं थींदड़ नीट यूजी बीहर इम्तिहान जी तयारियुनि लाइ अॼु ऊच सतही जाइज़ा बैठक कई। इते ख़बरूं पूरियूं थियूं। नमस्ते।
3: आकाशवाणी भूज समाचार अशरफ नथवाणी वांचे छे। नमस्कार। ભારતીય રેલવે હવે ટ્રેનોની સુરક્ષા અને જાળવણી માટે આધુનિક ટેકનોલોજીનો સહારો લઈ રહી છે। પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે ટ્રેનોને વીજ પુરવઠો આપતી ઓવરહેડ ઇક્વિપમેન્ટ ઓએચઈ પ્રણાલીની તપાસ માટે ડ્રોન દ્વારા હવાઈ નિરીક્ષણનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે। ટ્રેક પર દેખાતા વીજ તાર, થાંભલા, ઇન્સ્યુલેટર અને અન્ય સાધનોની સમગ્ર વ્યવસ્થા ઓએચઈ કહેવાય છે। આ વ્યવસ્થામાં નાની ખામી પણ સર્જાય તો ટ્રેનોના સંચાલન પર સીધી અસર પડી શકે છે। આ માટે અમદાવાદ મંડળે ડ્રોનની મદદથી સફળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું। આ નવી પદ્ધતિના કારણે હવે ટ્રેક બ્લોક લીધા વિના જ ખામીઓ ઝડપથી શોધી શકાશે। કચ્છના સંદર્ભમાં જોઈએ તો સામખિયાળીથી ગાંધીધામ, આદિપુર, અંજાર, ભુજ અને આગળ નલિયા તરફ ચાલી રહેલા રેલવે નેટવર્કમાં ઇલેક્ટ્રીફિકેશનનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। હાલમાં કચ્છમાં દોડતી મોટાભાગની લાંબા અંતરની ટ્રેનો ઇલેક્ટ્રીક એન્જિનથી સંચાલિત થાય છે। આવી સ્થિતિમાં ટ્રેનોને સતત અને સલામત વીજ પુરવઠો આપતી ઓએચઈ વ્યવસ્થાની નિયમિત દેખરેખ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે। જિલ્લાના શિક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ નોંધાઈ છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સંજય પરમારને નવી 37 શાળાઓના મંજૂરી હુકમો એનાયત કરાયા હતા। આ અંગે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સંજય પરમારે આકાશવાણી સમાચારને જણાવ્યું કે અગાઉ મંજૂર થયેલી 11 અને હવે નવી મંજૂર થયેલી 37 સહિત કુલ 48 નવી માધ્યમિક શાળાઓ કચ્છ જિલ્લાને ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી 37 શાળાઓ ઇન્ટીગ્રેટેડ મોડેલ હેઠળ કાર્યરત થશે। ઇન્ટીગ્રેટેડ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 1-12 સુધી એક જ કેમ્પસમાં સતત અભ્યાસ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે। આ ઉપરાંત માંડવી ખાતે નવી ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળાને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે। તાલુકાવાર નવી શાળાઓની ફાળવણી જોઈએ તો રાપરમાં 9, અબડાસા અને નખત્રાણામાં 8-8, ભુજમાં 7, ભચાઉમાં 6, લખપત અને અંજારમાં 3-3, તેમજ માંડવી, મુંદ્રા અને ગાંધીધામમાં 1-1 માધ્યમિક શાળાને મંજૂરી અપાઈ છે। રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી દ્વારા આગામી 21 જૂને યોજાનાર નીટ યુજી પરીક્ષા દરમિયાન પરીક્ષા કેન્દ્રના સ્થળ તેમજ તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં સલામતીની વ્યવસ્થા ગોઠવવા પ્રતિબંધાત્મક હુકમો જારી કરાયા છે। જિલ્લામાં આ પરીક્ષા અસામાજિક

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं। फ्रांस के पेरिस में विवेटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदि

0: आज नई दिल्ली में भारत ने अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पक्का कर चुकी है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिया महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आज ने मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश ने 5 दिवस की मुलाकाते इंदौर पहुंचा। अमेरिका अने ईरान वच्चे 14 मुद्दाना शांति करार पर हस्ताक्षर थता पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज फ्रांस ना टोचना उद्योगकारों साथे बैठक। राष्ट्रीय तपास एजेंसीए पंजाब ना अमृतसर में लश्करे तैयबा साथे संकळायेला अंकुश कपूर ना घरे दरोड़ा पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसीए विश्व 13 प्रदेशों में भूखमरा की स्थिति वधु वणसी शके तेवी चेतवनी आपी। पश्चिम रेलवे अमदावाद मंडले ट्रेनों ने वीज पुरवठो आपती ओवरहेड इक्विपमेंट OHE प्रणाली की तपास माटे ड्रोन द्वारा हवाई निरीक्षण सफल परीक्षण कर्यू। जिला शिक्षण क्षेत्र वधु एक महत्वपूर्ण सिद्धि। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हस्ते जिला शिक्षण अधिकारी संजय परमार ने 37 नवी शालाओं मंजूरी हुकमो एनायत कराया। मांडवी खाते नवी उच्चतर माध्यमिक विज्ञान प्रवाहनी शाला ने मंजूरी आपवामां आवी। अंजार तालुकाना मीठा पसवाड़िया खाते उच्च अने तांत्रिक शिक्षण राज्यमंत्री त्रिकमभाई छंगा जन कल्याण शिबिर नो प्रारंभ कराव्यो। राज्यमंत्री हस्ते नवनिर्मित प्राथमिक शाला तथा ग्राम पंचायत नु लोकार्पण करायो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आगामी 21 जूने योजनार नीट UG परीक्षा दरमियान परीक्षा केन्द्र स्थल तथा आजूबाजू विस्तार में सलामती की व्यवस्था गोठवा प्रतिबंधात्मक हुकमो जारी कराया। राज्य में लोकल फॉर वोकल पर वधु ध्यान केन्द्रित करने राज्य सरकार ने अधिकारियों ने सूचना। अने जिला में भूकंप ना आंचकाओं सिलसिलो यथावत रहो। गई रात 12:39 मिनिटे भचाऊ और आसपास विस्तार में आंचको अनुभवायो। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ना रिपोर्ट अनुसार कंपन की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापवामां आवी। मुख्य समाचार पूरा थया।

हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर। लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी खाक में कैसे निकली है।

0: इसकी स्पीड कितनी अच्छी है।
1: अपने तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है। इसे ये मैं इस कंपनी की मशीन आया, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मैंने तो इतना ही चलाने में हाथ रखी है की कभी चलाई नहीं है ना, इसलिए जैसे आपने कहा हल्की तो चलती है।
1: भाई अच्छा हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो, अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जे के ऐसे लेने जाए।
0: अरे देखिए अभी तो जाएंगे, जब मैं सीना सीख लूँ तब बंद कर दीजिएगा, फिर सीखूंगी तो किससे।
1: क्यों, मिसेस चोपड़ा है, वर्मा जी की वाइफ है, शीला जी है, किसी से भी सीख सकते हो, उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय कोई पकड़ जा रहा
0: है। यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली बनानी
1: है। अभी इजीली फिजीली बने, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप कपड़े दर्जे के अकेले नहीं जाएंगे।
0: ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्यों आया है, बड़ी सुंदर लगे है। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूँ कि हे भगवान हमारी बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज साया सिलवा लूंगी। हाँ हाँ सबों को सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम कर ही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा तो सुविधा से अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी।

0: नहीं मुन्नी, साग से खिला। आज तुम्हें साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जाने से।
2: मुझे भी खिलाओ मुन्नी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से पौध दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ
0: बहू जी? बाबू जी आज लौटेंगे?
1: हाँ तुम जाते होंगे,
0: एक महीने तो हो गया मेरे बाबू जी को भी।
1: हाँ एक महीने से तो ऊपर हो गया। आप अभी आओ मेरे हाथ की साइड में लगा रही तो।
0: अच्छा अच्छा बाबू जी।

0: 还没斩定，拿回去。我的费老师，
1: 我的费，刚刚在金刚的，还是你的？我这个两个包裹。
0: 俺的家伙，俺的家伙，俺的小妹，俺的儿子，俺的女儿，这天放出来了的。我小弟来打的，俺的女儿的母亲给俺的。
1: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
0: अब मैंने अभी तो नहीं किया जाता, मैंने से काम कर लिए।
1: कौन है? और हाँ बेटी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
2: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मारेगी, अब शायद ही इम्तहान देता हूँ। कलमी नहीं पकड़ी जाती?
1: अरे नहीं नहीं, पकड़ेगी पकड़ेगी, जरा ध्यान से पढ़ती हो, बस इम्तहान तक सब ठीक हो जाएगा।
0: रुक देखो जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े दे गई है, जिंदलाइन में भिजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी दे गई है।
1: नौकरानी गई?
0: हाँ बाबू जी।
1: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के साथ बदलवाओ, और कह देना कि हमारा घर कोई गलती की दुकान नहीं है, समझे?
0: ये सुनिए, तो मैं वापस करा दूंगी शाम को, पता भी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
1: मान जाए बुरा, मुझे तो उसे इस तरह थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरे अब क्या करें?
0: जी जी जाती हूँ। देख तो कौन है?
1: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद
0: है। देखिए आपस में ये सब करना ही पड़ता है, जरा ऐसे काम के लिए मैंने नहीं किया।
1: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने? जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा फंसिया है, दो महीने हो गए मशीन।
2: घोष बाबू की लड़की आई है, कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं तो कुछ कपड़े सिलूं।
1: सुन लिया, सुन लिया तुमने नीना? दीदी जाकर कहते मशीन खाली नहीं।
0: नहीं नहीं, सुन बेबी, कहने तुम्हें से जाके ही मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी तो आकर सी लीजिएगा।
1: क्या क्या तुमने? यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे नहीं है?
0: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मुझे चाहे एक दिन के लिए मांग ली, ये रख के रखे क्या होता, कुछ खींच तो जाएगी।
1: ठीक है ठीक है, किए जाओ करोड़, मोहल्ले वालों को भी ऐसा करोड़ पड़ी और कहा मिलेगा। मैं कहता हूँ मेरा एक दिन ना पकता हो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ तक नहीं सी सकते।
0: आप तो
1: ठीक है मेरा क्या है?
2: डैडी एक मिट्टी है, उसने खर्चा दिया है।
1: क्या है? नीना ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
0: दुकान पर?
2: हाँ मम्मी गई तो थी, वही तो डॉली ने उसके अंदर चला चला के पहिया चला दिया था।
0: जरा सी खराब हो गई थी,
1: जरा सी खराब हो गई थी। ये देखो ये देखो, मैं पूछता हूँ कौन निकल जाता है? मैंने जाकर मिसेज जिंदल से या मिसेज झा से कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
3: बाबूजी
1: कौन है? कौन है
3: भाई? मैं मशीन लाया हूँ।
1: चले आओ अंदर।
3: अच्छा
1: यही मेरे कर दे। ये मशीन क्या हुआ?
3: बाबूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छोड़ी थी तो थोड़ी सी खराब हो गई है।
1: थोड़ी सी खराब हुई है?
0: क्या नहीं
1: हुआ है हमारा सर? और क्या, देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे की रॉड के बट गए, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो दो जगह के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबित बची है ना वो भी किनारे
0: रखे। इतनी टूट गई मुझे क्या मालूम
1: है? ठीक है आपको मालूम पड़ गया तुम्हें? तुम कहाँ फंस के जा रहे हो? उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे
3: पास। मैं कहूँगा
0: कहाँ जा रही है? सुनिए तो उनके घर में चले
1: जो प्रावती ना होगी खराब और ना बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना। भगवान बचाओ मशीन के
4: मशीन का चक्कर। ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी, आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजन देवालो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉक स्टार फिल्म से गाने शाद कामिल के बोल ए आर रहमान का संगीत।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीमा टांग कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: संगीत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर रावी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हासनी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। और कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, और ये बड़ी मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरे प्रयोग बना हो गया।
0: सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

介できるのか、ありがとうございます。जनता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, निलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन फेल। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के

0: फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9.

मेरा गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किराया मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो बस अब और किसी सहारे की जरूरत

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाए, मगर

वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर न कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई न कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती है, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं उनको बार बार

सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है।

चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है। बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो और दिल उसके आने की आहट से

0: Sí. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ

मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेक्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीपटेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10%

0: क्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो है वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मारेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सके, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सके। और हाल ही में इस बजट में

0: अब इस सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा, कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं।
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लैकाडॉन टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, न केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इसे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है, और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: इस सिग्नल का जो अर्थ है वो यह है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular

0: particular paradigm, and it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets, and it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, Purvuttar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं।
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलांग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
3: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
4: Thank you very much.
3: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
4: I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would sort of contextualize what has happened, we've already given the environment, there were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction, and I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Dhan, Grand Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction of the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India, and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier, and I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have

पांच वगे ने दस मिनिटे माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में योजनार रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम दिल्ली थी प्रसारण कार्यक्रम अंत सुधी छ वगे 30 मिनिटे युवा दोस्तों कार्यक्रम युववाणी सात वगे गैर फिल्मी गीतों सात वगे 22 मिनिटे खेडूत मित्रों कार्यक्रम गामनो जोरो आठ वगे सूरमाधुरी आठ वगे 30 मिनिटे गुजराती गैर फिल्मी गीतों नौ वगे 30 मिनिटे विविध भारती मोबाइल केन्द्र पर सौप्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार रात्रि 10 वगे गुजराती गीतों रात्रि 10 वगे 30 मिनिटे हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम तो आती अमरा आती काले प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा हवामान समाचार स्थानिक हवामान खाता की याद अनुसार आज महत्तम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस नोधायु जो सामान्य करता 1.1 डिग्री सेल्सियस वधु रह्यु आज लघुत्तम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह्यु जो सामान्य करता 1.4 डिग्री सेल्सियस ओछु रह्यु रात्रि 8 वगे 30 मिनिटे हवामां भेजनुं प्रमाण 55% नोंधायु आगामी समय दरमियान महत्तम तापमान अंदाजे 39 डिग्री सेल्सियस जेटलू रहेवानी संभावना छे। हवामान समाचार पूरा थया। 354.6 मीटर्स अर्थात 846 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र छे। अत्यारे रात्रि 11 वागे 48 मिनिट थई रही छे। अमारी आजनी बीजी सभा अहीं समाप्त करीए छीए। जो कि अमारी डीटीएच सेवानुं प्रसारण आप सांभळी शको छो। फरी मळीशुं आवतीकाले सवारे, त्यां सुधी रजा आपशो। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।